बहु परपंच कर परधन ल्यावे, सुध दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले, जेड़ी पापा दी खटी तू खट रहा है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है, याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै एदे अमोलक श्वास जो वाहेगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया, जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया, जदों अंत समा आ गया जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना, ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनता कीतिया हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैन दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिना। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां।

जब लवली आग मिला तुझे तब लो परम पे फिर पे बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत्व विचार यह मथुरा जगतार्ग को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और देने कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हलूर कहने लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अब गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देव तैयार सोने थाल में पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाए माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने चेपे तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद दी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर दी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तुसी भी ठंडे जल की गागर पर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल फिर आखो धन गुरु रात दस गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात कन्या नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशाद नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा दे कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

संबंधी हो, फिर आप सच है जोड़े ने रखा कोई नहीं फिर अजय पाओ कुटी भी सहज जी कह लगे गंगा जी जी पाच है उसी का महिला न जाओ साई जी आप ही चलो अगर कह लगे थोड़ी जी सेवा बाकी रह गई है वो भी कर तो अनुप्रवर्जन दे पाशाह संगत विचो नग दे नग दे नग दे जथेदार जी को आके हो गया प्यार नाल किया जथेदार जी गुरु की और संगतान ने जोड़िया वास्ते सेवादार की लोड़ है ना दास कम और गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाई नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की राति खराब शादी देख चुका है ठंडा जल पिलाया सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धर्म अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यार तेनों इतने नहीं बिठाना तेनों नाल लेके चलांगे ते गुरु की अरदास करांगे पातशाह पहली बार तेरे दर्शन करने वास्ते आया और कुछ नहीं मंगते जो कुछ सिख नूं दिता जे साडी को नहीं दिता तेरे शक्ति तो साडे गुनाह बख्शे जाने कह लगी जथेदार जी मैंने इतने मजबूर किया तो प्यारी सास ने जी सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तो हरिमंदर साहब जा रही है तो जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार आखो पहनो संगत अंदर पहुंच साहब श्री गुरु साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए बाबे ने किया सा संग जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए श्री अमृतसर गुरुद्वारा पितली साहब श्री दर्शन किए पुतली घर के कोल गुरुद्वारा स्थान इतिहासक जो साखी पुतली साहब पुतली घर के नाल पिपली साहब गुरुद्वारा संगत ने कहा बाबा जी पिपली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हुए क्योंकि संगत पहली दिन दर्शन करवा गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुढ़े ने कहा नहीं राति श्री हरिमंदर साहब बहुत पे आ 11 का टाइम साहब जी ने कहा सी बाबे यार गुरु दिया संगत दूर उतर के आईया हर कुछ मिला तो उतारा किया है गुरु की संगत भुखी देते मैं कहा सी पातशाह हुकुम करो जाके लंगर छका दें पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबे यार तू तो रोज गुरु की संगत की सेवा करना है अज इतना सानू दे रात दिन इतनी शांत एक दूजे के मुंह वाल वेख लग गया जथेदार ने कहा बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रचार भी छकाया जल भी पिलाया पक्षा भी करता रे बाबा बुढ़ा जी कह लगे प्यारे हो सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा जी किस तरह हो सकता है तो बाबे ने कहा पता हूं उसे कितने है बड़े निराश एक दूजे के मुंह वाल तक के उदासी भी जाके कह लगे बाबे हूं तो जोड़िया का राखा बिठा गया बाबे बुढ़े दिया पुपाई और कह रही सात संगत पंजे गुरु नानक जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जाए मगर संगत भी भजी जाए पहुंच गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेंगे उन्हों साफ कर लेते हैं और धूड़ मथे दे किसी अगम्भी खेड़े पढ़ते हैं

पातुक बिना से गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा से गुर अमरदास परसी।

होए बिरकत बनारसी रहंदा रामानंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई ओ स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने क्योंकि रब दे प्यारे रात सौं के नहीं बतांदे ओ ते रात जाग के बतांदे ने गुण गा के।

समा बीते। स्वामी रामानंद एक दिन इशनान करके अपने डेरे आए। ए मूर्ति पूजा नहीं सन करते, कमरे का बुआ बंद करके, अखां बंद करके, मन करके अपने ठाकुर नूं इशनान कराया करते सन। और एक दिन इशनान करारे ने ठाकुर नूं कपड़े पवाए, सिर ते मुकट रखिया। अचानक ख्याल आया मना, सिर ते मुकट पा दिता है, हार पाण दा ते ख्याल ही नहीं रहा। हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकदा, मुकट लावा तां बेअदबी हुंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाना होवे, हार छोटा होवे, पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए, हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकदा, जे हार ना पावा पूजा पूरी नहीं होंदी। इन्ने नूं कन्नां विच इक आवाज पई, स्वामी जी हार छोटा है, गंढ खोल के हार दी, हार गल विच पा के फिर गंढ बन दे। बिरती खुल गई, स्वामी जी बाहर आए। बुआ खोलिया, बार की देखते ने, भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली? ते कबीर साहब कहंदे ने, स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां। अमृत वेले गंगा दियां पौड़ियां ते सुता सां, तां तुसी कहा सी उठ राम के राम को। ओदों दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दियां अखां विच अथरू आ गए। मन पार आया, उन्हां कबीर नूं बाहों फड़ के अपने गल नाल लगा लिया। ते नाले कहंदे ने, ओए कबीर तू हुण सेवक किथे, तू ते मेरे तू भी अगे लंघ गए। जिन्हें मन दी गल जान ली वो सेवक किथे, और सचमुच राम कबीरे भेद ना पाई। ए अमृत वेले जागण दा फल के कबीर विच ते राम विच, उस वाहिगुरु विच।

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नूं पकड़दा है। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई एक

दुखी लोगों परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते कई जगह पहुंचे और एक बारी

उते नहीं उतरे। एक तोला दो तोले पांच तोले दस तोले करद्या करद्या जिन्ना भी सोना सी उस तकड़ी विच पा दिता, पर जिहड़े राम दे अखर वाला

उस वक्त इस शब्द का उपदेश नामदेव जी ने किया। उन्होंने लोगों को उपदेश जेड़े कर्म कांड करते हैं पर मन में

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर साड़ देवे

और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप में जिसनों हिंदी में सांड कहते हैं रूप में भजे आए तो वह जड़ा पहाड़ से समा गए।

देव बदलावन देव मैं ते इक रमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई जिस अकाल पुरख ने जिस रमैये ने दुनिया बनाई

संसार दे अंदर बोलना है पर गुरु की मत द्वारा। हजूर गरीब नवाज साहब सचे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमा